ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM 102.9 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 मई सन 2026। इस समय सुबह के 8:56 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:59 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज का शुभ विचार। भ्रम अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देता है, लेकिन वह रिश्ता कैसे अच्छा हुआ जो सिर्फ एक भ्रम से टूट जाता है। चाणक्य। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए 2 दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
2: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है। तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
0: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशु पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के

0: साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
1: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
0: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल एसबीआई पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ रूपये की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
2: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा कर क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा रजनीत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग 3 गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थीं। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएं दूरी देखकर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है आप कहीं भी रहें। और सुनते हैं।

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड।

0: ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। श्रोताओं, आइए एक बार फिर रुख करते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े

कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब।

0: जी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान विष्णु
1: मंगलम अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
2: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए सम्मान।
1: सिकंदर क्या मत की कुतिया मेरे यार झड़प हो गई।
3: मैं बताती हूँ। दिला में मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
1: बस बस करो मेम साहब।
4: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब जिससे तू
1: नहीं

0: हमेशा मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता
1: है। नहीं
0: सिकंदर, आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर, ये तुमने क्या किया? क्या?
2: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
0: तुम?
3: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
4: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
2: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया। एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई। एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

0: लाएगा।
1: प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे, उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 10 बजने वाले हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM 102.9 MHz पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चिंतन।

मानव के अधिकार एवं कर्तव्य समाज में उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों के मद्देनजर रखते हुए विभिन्न समाज सुधारकों ने तन मन धन अधिकारों की रक्षा में न्योछावर कर मानव अधिकारों की रक्षा में न्योछावर कर विश्व बंधुत्व पर विशेष बल दिया, जिनमें महात्मा गांधी का नाम उल्लेखनीय है। मानव अधिकारों के हक में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई की शुरुआत हाड़ मांस के एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने दक्षिण अफ्रीका में रेलगाड़ी के सफर के दौरान की और अपनी अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखा। आगे चलकर वही व्यक्ति जन जन की चेतना बन महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाज को बदलने के लिए गांधी ने स्वयं को बदल दिया था। अहिंसा को उन्होंने बुनियादी जीवन का मूल्य माना। सत्य को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जिसका वार कभी निष्फल नहीं होता।

देश के विभिन्न मनीषियों, समाज सुधारकों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि गांधी के बिना मानवाधिकार की संकल्पना अधूरी रह जाती है। मानवाधिकार की पृष्ठभूमि गांधी जी की दृष्टि और दर्शन का ही परिणाम है।

0: मानव अधिकार विषय पर अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी चिंतन। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ 102.9 FM मेरा चैनल के प्रसारणों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, फिर जाइए लाइव रेडियो पर। रेडियो के बहुत सारे चैनल, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए अपना पसंदीदा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ चैनल को और फिर मस्ती सुनिए हमारे पंचरंगी प्रसारणों को कहीं भी कभी भी।

0: जरा। साफ हो गुलशन, महका हो गुलशन, चहका हो गुलशन, चलो गुलशन को गुलशन बनाएं, प्लास्टिक को कहें ना, थैले को कहें हाँ। सोमवार से शुक्रवार दिन में 1:05 पर सुनिए NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक शैक्षणिक कार्यक्रम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
1: और ये मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस समय सुबह के ठीक 10:05 हुए हैं। लीजिए अब लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम, एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं ऋचा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता दीपक मेहता।

ऋचा शर्मा एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका होने के साथ साथ भक्ति गायिका भी है। कई भक्ति संगीत इन्होंने गाई हैं और 2006 में उन्होंने फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का सबसे लंबा विदाई गीत गाया था।

पंडित आस करण शर्मा के मार्गदर्शन में ऋचा ने भारतीय शास्त्रीय और हल्के संगीत का उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऋचा ने गजलें, फिल्मी गीत, पंजाबी, राजस्थानी लोकगीतों को अपने गायन कौशल में शामिल किया, जिससे उनकी आवाज विभिन्न शैलियों में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने लगी।

ऋचा शर्मा ने 50 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज के गाने गाए हैं और ये गाने काफी सुने गए, प्रचलित हुए, पॉपुलर हुए और लोगों ने साथ साथ गुनगुनाए।

रेजा शर्मा को कहीं पुरस्कार भी मिले। 2003 में कांटे फिल्म के इस गाने के लिए उन्हें बॉलीवुड फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में मिला था।

गायक गायिकाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन जिनकी आवाज थोड़ी अलग हो उसको एक अलग पहचान मिल ही जाती है। तो बिल्कुल एक अलग आवाज रिचा शर्मा की उन्हें एक अलग मुकाम तक ले जाती है। आने वाले दिनों में और भी कई बेहतरीन गाने हम रिचा शर्मा की आवाज में सुन पाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम एक ही कलाकार जिसमें कलाकार थी रिचा शर्मा खत्म होता है यहीं पे। अब दीजिए दीपक मेहता को इजाजत। नमस्कार।

0: फिल्म संगीत में एक विशेष कार्यक्रम, एक ही कलाकार ऋचा शर्मा को अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे दीपक मेहता। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?

0: लाख दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
0: अरे?
1: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। श्रोताओं, लीजिए अब लेकर हाजिर हैं महिला जगत कार्यक्रम।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सुप्रभात हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को आपकी रेडियो फ्रेंड हीना की ओर से। स्वागत है आप सभी का आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। श्रोताओं, ये प्रोग्राम आपको और हमें प्यार के रिश्ते से बांधे रखता है। बहनों, रिश्ते जो होते हैं वो तब तक बंधे होते हैं जब तक उनमें प्यार और अपनापन रहता है, और सबसे ज़्यादा प्यार और अपनापन हमें बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है। बड़े बुजुर्ग तो उस पेड़ की तरह होते हैं जो हमेशा हरे भरे और छांव देते हैं, जिनकी छांव में हमें धूप का एहसास तक नहीं होता। बहनों, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और अनुभवों की खजाने की चाबी उनके पास होती है, इसलिए हमेशा घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए अनुभवों को हमें फॉलो करना चाहिए। बहनों, हमें कोई भी काम अगर शुरू करें तो उसमें बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका पुराना तजुर्बा आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप बड़ों के अनुभव से काम करेंगे और उनकी सोच को, विचार को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक हमें उनकी फ्यूचर की टेंशन नहीं रहती। 10th और 12th के बाद बच्चों की करियर को लेकर हम थोड़ा असहज होते हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षा के बाद सही करियर चुनना मुश्किल लगता है। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है। आप अपने बच्चों के करियर का चयन बच्चों की रुचि, योग्यता और भविष्य के स्कोप को ध्यान में रखकर करें। सिर्फ दोस्तों की नकल या दबाव में स्ट्रीम न चुनें। आप पहले देखें कि बच्चा किस विषय में स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करता है और उसे क्या पसंद है। सही मार्गदर्शन के लिए आप विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकती है। पारंपरिक रास्तों के अलावा स्किल आधारित कोर्स पर भी आप विचार कर सकते हैं। बच्चों की जिस विषय में रुचि होगी कुदरती रूप से वो उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप 11वीं और 12वीं के बाद अपने फील्ड में आगे स्टडी कर सकते हैं। कोर्स चुनते समय बच्चों की रुचि और भविष्य की इंडस्ट्रीज को, जरूरतों को देखें। डिग्री से ज़्यादा आज के समय में स्किल की वैल्यू ज़्यादा है तो आप उन्हें भी प्राथमिकता दे सकते हैं। बहनों, ये सही है कि बच्चों के विषय का चुनाव करते वक्त आप उनकी पसंद को पहले प्राथमिकता दें। गलत चुनाव या जबरदस्ती थोपा गया विषय आपको बहुत नुकसान दे सकता है। सखी, बच्चों के सही करियर का चुनाव करना जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। यह न केवल आपके आगे की पढ़ाई की दिशा तय करता है बल्कि आपके भविष्य के पेशेवर रास्ते पर भी गहरा असर डालता है।

बहनों आइए अब बात करते हैं ठुमरी साम्राज्ञी गिरजा देवी के बारे में। 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में जन्मी गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का वो सितारा थी जिन्हें ख्याल, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चेती में महारत हासिल थी। गिरजा देवी ने बचपन से ही अपनी संगीत शिक्षा प्रसिद्ध सारंगी वादक सरजू प्रसाद मिश्र और चंद मिश्र से हासिल की। सेनिया और बनारस घराने से संबंध रखने वाली गिरजा देवी शायद अकेली ऐसी गायिका थी जिन्होंने अपने लंबे करियर में भक्त कवियों के साथ निर्गुणियों को भी गाया। 9 वर्ष की उम्र में गिरजा देवी ने एक फिल्म में अछूत कन्या की भूमिका भी निभाई थी। गायकी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। गिरजा देवी को भी अपने युग की रूढ़ियों के विरुद्ध कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1949 में आकाशवाणी से अपने गायन का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने 1951 में बिहार के आरा में आयोजित एक संगीत सम्मेलन में गायन प्रस्तुत किया। इसके बाद गिरजा देवी की अनवरत संगीत यात्रा शुरू हुई। ठुमरी की मल्लिका की संजीदगी, जीवंतता और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रेम का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जीवन के आखिरी सालों में भी अपनी गायकी की प्रस्तुति देती रही। 24 अक्टूबर 2016 को वह इस दुनिया से चली गई और इस तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत ने अपनी सबसे मधुर आवाजों में से एक को खो दिया। शास्त्रीय संगीत को सबसे लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी कोशिशें हमेशा हमारी यादों में रहेगी।

रक्तदान महादान। जी हाँ बहनों, यह दान सबसे बड़ा महादान है। न जाने कितनों की जान बचती है। खास करके जो थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनके लिए रक्त का दान करते रहना चाहिए। इस अनुवांशिक रक्त विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को सहयोग देने के लिए हर साल 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, विवाह पूर्व जांच को बढ़ावा देने और सुरक्षित रक्त आदान की आवश्यकता पर जोर देता है। इस दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं क्योंकि थैलेसीमिया रोगियों को नियमित रक्त की जरूरत होती है। यह दिन थैलेसीमिया के वाहक होने के बावजूद अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करने और समाज को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का विषय अब और छिपा नहीं है। साथी बहनों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस भी है। यह हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन टेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस के मुख्य कार्य आग, बाढ़, अकाल, भूकंप जैसे किसी भी आपदा के पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान करना, युद्ध और अन्य आपदाओं के पीड़ितों के लिए रक्त की व्यवस्था करना और आपूर्ति करना, दुर्घटना की स्थिति में हर संभव प्राथमिक उपचार देना है। रेड क्रॉस का नारा अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का निशान है। यह हमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के महत्व की याद दिलाता है।

महिला जगत कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे, जिसका प्रसारण आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से किया गया। दिन के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं विविध भारती राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों की ओर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: विविध भारती रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
3: आजा शाम होने आई।
4: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना शुभा मुद्गल की आवाज से, इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों।

0: के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: यह है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दिन।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर

0: पंकज उदास की आवाज आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तिरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी

0: परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
2: वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना शब्बीर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर, और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
3: जो हीट

0: का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

क्या ये सर्कस है? और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, छोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: है खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दिन का एक बजने वाला है, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित सीएमएचओ की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर

0: हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी एआई के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान एआई समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार।

0: श्रोताओ, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओ, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी,
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना, और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है, और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है,
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं,
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है, सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं, ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा, और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है, और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या न दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है।

0: बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में

ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे कमरे में जाकर।

0: मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी

0: सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न

विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: आकाशवाणी आकाशवाणी।
3: FM बैंड 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। श्रोताओं, आइए एक बार फिर रुख करते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
6: रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की CD देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया। शादी मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी, आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना यह गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई, शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मजा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ

समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे

लगता है। आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं, उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों, ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं। आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी। नवरंग फिल्म का गाना।

0: रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए, मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए, ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

0: जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में सुनवाए जाएंगे, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान

0: अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर।

0: था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर, और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा,
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे।

0: जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम,
1: अच्छा तो
0: तो मैं वहीं
1: ये,
0: से करती हूँ।
1: अच्छा तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
0: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में 2 बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में, तो
1: अच्छा
0: वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं।
1: जी
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं।
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये
0: हाँ
1: कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से,
1: जी
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत
1: जी
0: सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है।
1: तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
1: दसवीं
0: तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी सखी बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन।
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए ऐसा लगता, बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम के नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के?
1: हाँ,
0: तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: हाँ, और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है,
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से
0: हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं इस दिल

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, आप कितने पर कैसा मौसम है?
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुन
0: रहा। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले गुलाबी सिंधरिया लग मुझे नजरिया है, लता जिंदा है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सर की सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी
1: है, जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ
1: जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से। क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं
1: बस
0: झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात
1: मुझे
0: है,
1: अच्छा।
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं। तो अभी भी
0: जी
1: उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: टाइप से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं नहीं
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं
0: जी
1: जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की, कि
0: क्या बात
1: वो
0: है।
1: जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत् तत् थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिच्चल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आजमल।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी, उज्जैन उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में इस
1: अच्छा था और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की। ये
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: निंदाई खुदाई है, तो कुछ चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहां पे पशु भी हैं,
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहां पे पशु भी
1: हाँ है ना,
0: हैं।
1: है भैंस भैंस है, भैंस
0: क्या है वहां पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहां?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे? तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने
1: बच्चों
0: बच्चों की तरह।
1: की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी भी
0: चारा देने
1: बहुत है तो
0: का।
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं। फिर
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: वो
0: होता
1: वहाँ
0: होगा।
1: पे घर रहे, इसमें

0: घर अंदर बांध कर चला देते हैं।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
1: तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से? मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना,
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलंग वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला वारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का यह फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो माँ बाप नहीं होते हैं।

हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे

पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती
जैसे मैं ही

उसके जन्म देने वाली माँ हूँ। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया। बीते हुए दर्द

और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे, जो हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हसरत जयपुरी का लिखा एक नगमा। फिल्म का नाम है हमराही।

आकाशवाणी एट 90। सदियों फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी की मीरा चैनल से, और आइए अब सुने लता मंगेशकर की आवाज में एक नगमा, साहिर का लिखा ये गीत है। रवि ने इस गीत को संगीत दिया है और फिल्म का नाम है आँखें।

0: कभी कभी।
1: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, संगीत रवि का था, साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा था। फिल्म का नाम आप जानते ही हैं, आँखें। सदियों फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए, अब सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी की गाई एक रचना एसडी।

एस डी बर्मन की संगीत रचना थी अभी आपने जो सुनी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। साथियों, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मीरा चैनल से, और अब आइए किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाते हैं राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया अनजान का लिखा एक नगमा, फिल्म का नाम है याराना।

किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने याराना फिल्म का नगमा सुना। राजेश रोशन का संगीत था, गीतकार थे अनजान। साथियों, ये आप सुने आपकी परछाइयाँ फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मदन मोहन का संगीत है, गीतकार हम आपको बाद में बताएंगे।

सदियों फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपको अब सुनवाते हैं हमराज फिल्म का एक नगमा, महेंद्र कपूर की आवाज़ है और रवि का संगीतबद्ध किया, साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा है।

रवि की संगीतबद्ध किए साहिर लुधियानवी के लिखे महेंद्र कपूर के गाए फिल्म हमराज के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी हाँ आपके नाम।
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
9: नमस्कार साथियों, मैं आपका रेडियो दोस्त रोहित सुथार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, अगर हम चाहते हैं कि रोज़ सुबह उठते ही एकदम तरोताज़ा महसूस करें तो उसके लिए रात को अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद केवल आराम नहीं है बल्कि हमारे शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने का एक प्राकृतिक तरीका है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल ने हमारी नींद को काफ़ी प्रभावित किया है। बेहतर नींद के लिए कुछ बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोज़ाना हमें एक ही समय पर सोना और जागना चाहिए जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। सोने से पहले हमें टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा साथियों, हमें रोज़ाना शारीरिक व्यायाम भी नियमित रूप से करना चाहिए जिससे गहरी नींद आने में मदद मिलती है, और साथ ही हमें रात का भोजन थोड़ा हल्का और जल्दी करना चाहिए। साथियों, बेहतर नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इन बताए गए छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम अपने दिन को अधिक ऊर्जावान और खुशहाल बना सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

साथियों, अलगोजा राजस्थान के लोक संगीत का एक प्रमुख और आकर्षक वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से लोक गायकों और चरवाहों द्वारा बजाया जाता है। अपनी मधुर और गूंजती हुई आवाज़ के कारण ये रेगिस्तानी और ग्रामीण संस्कृति की पहचान बन चुका है। साथियों, अलगोजा लकड़ी से बना एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो देखने में बांसुरी जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक नहीं बल्कि दो बांसुरियाँ एक साथ जुड़ी होती है। इसे जोड़ी या पावा भी कहा जाता है। अलगोजा बजाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि कलाकार को दोनों बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर फूंकना पड़ता है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर क्षेत्रों में यह काफ़ी लोकप्रिय भी है। दोस्तों, अलगोजा केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि यह हमारे ग्रामीण परिवेश की जीवंतता का प्रतीक है। इसकी सुरीली धुन और मधुर संगीत आज भी श्रोताओं को आकर्षित करती है।

0: की जा सकती है।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, हर साल 8 मई यानी आज के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के मानवीय सेवा में जुटे रहते हैं और युद्ध, आपदा या बीमारी के समय लोगों की जान बचाते हैं। यह दिवस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म सन 1828 में हुआ था और 1901 में उन्हें शांति के लिए दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये संस्था कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर काम करती है, जैसे लोगों की सेवा करना, बिना किसी भेदभाव के मदद करना और निस्वार्थ भाव से काम करना। दोस्तों, आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तब रेड क्रॉस जैसे संगठनों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। ये दिवस दया और करुणा का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि मानवता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह एक महत्वपूर्ण वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक करना है। ये अभियान संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय समय पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये अभियान 8 से 14 मई तक आयोजित किया जा रहा है। साथियों, हमें भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसे हमें हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए। साथियों, यह सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, तो आप भी यातायात के नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए।

साथियों, गर्मी के इस मौसम में तापमान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और गर्म हवाएं भी अब चलने लगी है, जिससे हीट वेव यानी लू का खतरा बना रहता है। ऐसा तब होता है जब हवा की नमी कम होती है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। तेज़ सिरदर्द और चक्कर आना, तेज़ थकान, कमज़ोरी, ये सभी लू के लक्षण हैं। इस तेज़ गर्मी से बचाव के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे बार बार पानी पीते रहना, बाहर जाते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। वैसे तो कोशिश कीजिए कि दोपहर को बाहर ना निकलें, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो चेहरे और सिर को ढक कर रखें। साथ ही दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय कुछ हल्का सा खाकर ही निकलें। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी सावधानियाँ जिन्हें ध्यान में रखकर हम गर्मी और लू से बच सकते हैं।

साथियों, पद्म पुरस्कार 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने काम से समाज में एक मिसाल पेश की हो, चाहे वो कला हो, समाज सेवा हो, विज्ञान हो या खेल। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल padmaawards.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: साथियों आइए सुने कार्यक्रम सबरस। सबरस में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की गाई ये गैर फिल्मी रचना। उससे पहले ये संदेश।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सदियों भी आपने अभिजीत की गई रचना सुनी। कार्यक्रम सबरस का है और आइए अब आपको सुनाते हैं एक भक्ति रचना, अनूप जलूटा की आवाज है।

शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ

सामने आता है, तात्पर्य है श्याम रंग से कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों की सुंदरता

0: यहाँ पर एक प्रश्न और उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ।
1: अभी हमारे श्रोता अनुप जलूटा की गाई ये भक्ति रचना सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का सबरस का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुने श्री रामचरितमानस गान का 181वां भाग। स्वर महेंद्र कपूर का है, संगीत है सतीश भाटिया का।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित

लीन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

श्री रामचरित मानस गान का 181वां भाग अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। स्वर महेंद्र कपूर का था, संगीत था सतीश वाडिया का। हम आकाशवाणी की चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुने कार्यक्रम विवरण। उससे पहले ये संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: साथियों, आइए कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आपको बताते हैं कि शाम 7 बजे

किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेती किसानी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी सड़क पर सुरक्षित रहें विषय को लेकर। जानकारी दी जाएगी फलदार बगीचा लगाएं और लाभ कमाएं विषय को लेकर, साथ ही विशेष योग्यजन व्यक्तियों को दे सुविधाओं को लेकर। श्री जितेंद्र कुमार गढ़वाल से की गई भेंटवार्ता भी श्रोताओं को सुनवाएंगे। लोकगीत भी कार्यक्रम में होगा। फिल्म संगीत आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेगा लोक संगीत। 8:15 का समय रहेगा सुगम संगीत का। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर। 6:27 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना, हल्का इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। RPSC की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप

0: किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
3: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भावरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के

0: कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हील चेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। RPSC की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी IVF सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे IVF सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी IVF सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि ARTV नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के ENT विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से

0: जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा 2 दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पुजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रातुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी, दूजा हल्का में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता था का कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था का कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराने तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशका और उद्यमिया ने 23-25 मई ताई जयपुर माए फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माए शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी 1-2 यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इन पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ई बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवार ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रोटेम

जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग री ओरों 50 दिन रो काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रो है। वठे पहलीवाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान में लोगों सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा और पाली जिलारा कोलीवाड़ा में स्कूली विद्यार्थियों सारू योग शिविर लगाइचिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने

0: अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: बालोतरा जिला में जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली में नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारा माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओरू एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो चार्यो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रा नौजवाना माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगों बीच संपर्क मजबूत बनावनु है। इन कार्यक्रम रा तेत देश भर चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआं री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा रो दौरो कर रहा है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माए चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माए 25-28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माए राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रहा। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तहकीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रात उन्हीं हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, खेती किसानी।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम सुना वाला सब किसान भाई ने मारी छोटू भैरी ओरू घना घना राम राम सा। किसान भैया देखो मौसम चल रहा है गर्मी को, और गर्मी का मौसम में अपने खावा पीवा को भी ध्यान रखना चाहे। गर्मी का मौसम में बहुत सी बार स्वास्थ्य की संबंधी समस्या भी देखी जावे है, तो अपने गर्मी का मौसम को आनंद लेना है तो अपने विशेष तौर कुछ बातें ध्यान रखनी चाहे। आसानी अपने सड़क पर भी चलता समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहे, और गर्मी का मौसम में खास तौर सा, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखो लोग बाग बाहर तो निकले हैं लेकिन फिर भी अपने सुरक्षा जरूरी है सा। गर्मी का मौसम में असं की जो दो पहिया वाहन वाला है वे अपने निकले तो हेलमेट को जरूर प्रयोग करे सा, ताकि अपने हेलमेट सुरक्षित रहे है, और जैसा नहीं चौपहिया वाहन यानी कार वगैरह में निकले है तो अपने देखो सीट बेल्ट को प्रयोग भी करना चाहे सा। साथ ही अपने यातायात का जो नियम है वाको पालन करना जरूरी है। और आजकल देखो लोग आपके पास घना सारा मोबाइल फ़ोन है, वे बहुत सी बार आप भी देखा होगा कि फ़ोन पे बातें करता रहे जिको अपने दुर्घटना की संभावना बढ़ जावे ऐसा, तो अपने मोबाइल को प्रयोग भी नहीं करना ऐसा। गति सीमा को भी ध्यान रखना है, स्पीड भी वहीं अनुसार ही चलाना सा, और वाहन चलाते समय अपने खास बात है कि नशो नहीं करना ऐसा। दृश्यता को भी ध्यान रखना है रात के समय, और जो टू व्हीलर चलावे है वाकई ने भी विशेष तौर ध्यान रखना है, और पैदल चलवा वाला ने भी अपने विशेष तौर ध्यान रखना है कि वे फुटपाथ पे ही चले सा, और दाएं बाएं देखे भी के बाद ही अपने सड़क ने अपने क्रॉस करे सा। और ये चीज़ कुछ अपना ध्यान रखा तो अपना सड़क पर सुरक्षित रह सका, केवे है ना, सुरक्षित रहेगा तो देखो आगे जीवन भी अपनों सुरक्षित रहेगा सा, तो ये बात को जरूर ध्यान रखें सा। और अपने एक बात और ध्यान रखनी है किसान भाइयों ने, अगर आय बढ़ानी है तो अपने फलदार बगीचा लगा सके सा। अपा जाना है कि यो एक दीर्घकालीन वृहद लाभदायक व्यवसाय है सा, और आजकल केवल की परंपरागत खेती हूँ अपा आय अधिक नहीं कमा सका, तो फलदार बगीचा लगान भी अपा आय अपा बढ़ा सका हाँ। और विकाऊ के ये है कि एको साल दर साल अपने आमदनी भी बढ़ जावे है और अपने ज़मीन की कीमत भी बढ़ावे है सा। सही योजना को प्रयोग कराएं के अंदर उन्नत किस्म की चयन करा, उचित प्रबंधन अपा अपनी आय भी बढ़ा सका हाँ। साथ ही अपना फलदार बगीचा लगावा तो अपन मिट्टी की जांच जरूर करावा, और अपने जो जलवायु है वहीं के अनुसार ही अपने पौधा को चयन करा, किस्म को चयन करा, बाजार की मांग के अनुसार ही अपा पौधा चुना तो अपने लाभ ले सके। असं की आंवला है, आम है, बेर है, नींबू है, अमरूद है और बेल है, ये पौधा की अच्छी आमदनी अपने मतलब जो फल है या कि आमदनी अच्छी देवे है सा। बागवानी के लिए बहुत सारी सरकारी सहायता भी मिले है जो अपा उद्यानिकी विभागों अपा जानकारी लेन भी को लाभ भी ले सका सा। और अब एक कार्यक्रम में आपके लिए एक बातचीत लाया, जानकारी लाया, भेंटवार्ता लाया हाँ। विशेष योग्यजन व्यक्तियों को दे सुविधा है, यह जानकारी दे रहा है जितेंद्र कुमार गढ़वाल, तो मिलबेट सुना यह जानकारी, और यकों बातचीत कर रहा है सीताराम महावर।
2: साथियों इस समय अपने साथ हैं जितेंद्र कुमार गढ़वाल जो कि उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ हैं, और आज इनसे जानकारी लेते हैं विशेष योग्य जनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी जाती है। जितेंद्र जी कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: सर नमस्कार, अपने श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: सबसे पहले तो सर यही जानकारी चाहते हैं कि विशेष योग्यजन किसे माना जाता है।
3: सर सरकारी नियमानुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता जिसकी होती है उसको अपन दिव्यांगता के सारे बेनिफिट सरकारी योजनाओं में पात्र मान के देते हैं।
2: कुछ कैटेगरी के नाम आप साझा कर सकते हैं?
3: अभी 21 तरह की दिव्यांगता हैं, उनमें से गति विषयक दिव्यांगता, बोनापन, पेशीय दुर्विकार, अंधता, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, पार्किंस रोग, इस तरह 21 तरह की दिव्यांगताएं हैं जिनके लिए आदमी को दिव्यांग की कैटेगरी में रखा जाता है।
2: यह किस तरह से निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष योग्य जन है या नहीं?
3: सर इसके अंतर्गत अभी स्वावलंबन पोर्टल शुरू किया है, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति ई मित्र के माध्यम से स्वावलंबन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके बाद में वो जिला चिकित्सालय के वहाँ जाता है और वहाँ से चिकित्सक

0: जाके उसकी जांच करते हैं, उनकी जांच में 40% या उससे ऊपर अगर वो दिव्यांग होता है तो उसको सरकारी योजनाओं के लिए पात्र मानते हैं और उसको यूडीआईडी कार्ड जारी कर दिया जाता है।
1: एक तरह से मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कोई विशेष योग्यजन व्यक्ति दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल सर।
1: अच्छा, सरकार की कई तरह की योजनाएं विशेष योग्यजन के लिए संचालित की जाती है, चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो किस किस तरह की योजनाएं आपके विभाग के माध्यम से विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए संचालित की जा रही है?
0: सर, हमारे यहाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में कई तरह की योजनाएं दिव्यांगों के कल्याण के लिए हम चला रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, स्वावलंबन पोर्टल के थ्रू यूडीआईडी कार्ड 40% से ऊपर का इश्यू हो गया, उसके बाद में हम इस कैटेगरी में इनको लेंगे। सबसे पहली हमारी महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना। इसके अंतर्गत दिव्यांग माता पिता की संतान है उसको 0 से 18 साल तक के बच्चे के पालन पोषण के लिए हम पैसा देते हैं। वो बच्चा विद्यालय में या आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होना चाहिए। अगर 3 साल से बड़ा है तो उसको 0 से 6 वर्ष तक 750 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ने के लिए हम पालनहार योजना में कवर करते हैं। उसके बाद में दूसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना है सर, पेंशन की योजना। 40% या उससे अधिक दिव्यांग है जिसका यूडीआईडी कार्ड है उसको हम पेंशन के लिए पात्र मानते हैं। जन आधार में उसकी आय का अपडेटेशन करवाए वो और दिव्यांगता जन आधार में शो करवाए। 60,000 पर ईयर से ज्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए। आयु की कोई सीमा नहीं है दिव्यांग के लिए, उसको 1,250 रुपए प्रति माह दिया जाता है। तीसरी हमारी योजना है संयुक्त सहायता योजना। इसके अंतर्गत चलन निषक्तता जिनकी है, चल फिर नहीं सकते, उनके मूवमेंट के लिए हम उनको सहायक उपकरण का वितरण करते हैं जो पूर्णतया निःशुल्क दिया जाता है। दिव्यांगों के जीवन में गतिशीलता लाने के लिए ये योजना शुरू है। 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता है उनको हम ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, कैलिपर आदि सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण समय समय पर करते रहते हैं। अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना। इसके तहत दिव्यांगों को हम स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनको 5,00,000 रुपए तक का ऋण देते हैं, जिसमें 50,000 रुपए सब्सिडी अनुदान के रूप में देते हैं और उससे दिव्यांग अपना खुद का कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। इससे आगे फिर योजना हमारी है सुखद दाम्पत्य योजना। इसके तहत दिव्यांग पति या पत्नी में से एक दिव्यांग हो, 40% से ऊपर उसकी दिव्यांगता है तो उसको शादी में 50,000 रुपए की सहायता राशि देते हैं और अगर 80% से ऊपर दिव्यांग है तो उसको 5,00,000 रुपए सहायता राशि एक मुश्त दी जाती है। ये फिर अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस कन्यादान योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन माता पिता की पुत्री के विवाह में हम अनुदान देते हैं। 18 साल से बड़ी बेटी होनी चाहिए। 21,000, 31,000 और 41,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। क्लास 9 तक जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनको 21,000 अनुदान देते हैं। 10 क्लास पास है तो 31,000 और अगर ग्रेजुएट बच्ची है तो उसको 41,000 रुपए एक मुश्त अनुदान सहायता देंगे। फिर हमारी है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जो कि चलन निषक्तता है जिनमें 40% से ऊपर है उनको, पांव से अगर वो दिव्यांग है, हाथ उनका सही होना चाहिए नहीं तो स्कूटी चला नहीं पाएंगे वो, उन लोगों को हम स्कूटी देते हैं। ये हर बार सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत स्कूटियों के लिए हमारे पास आवंटित की जाती हैं। उनके अंदर हम पात्र लोगों को 18 साल से 45 साल के उनको कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके और उनको दे रहे हैं। अभी 25-26 में 67 लोगों को स्कूटियां वितरित करेंगे। उसके बाद में फिर हमारी है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत दिव्यांग बच्चे जो प्रथम क्लास से चौथी क्लास तक पढ़ते हैं उनको 500 रुपए प्रति माह हम छात्रवृत्ति देते हैं। 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 600 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा फिर हमारी योजना है मानसिक दुर्विकार से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जो कि उनके मानसिक दुर्विकार की वजह से चलने में बिल्कुल अक्षम होते हैं, अपने दैनिक क्रियाक्रम भी वो नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार अभी पावर ड्रिवन व्हीलचेयर वितरित किए जाते हैं, वो पूर्णतया निःशुल्क दिए जाते हैं। अभी हमने 7 लोगों को इस साल में पावर ड्रिवन व्हीलचेयर दी है जिसकी कीमत 4.90 लाख रुपए है।
1: चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो किस तरह के विशेष योग्यजन यहाँ पर विद्यमान हैं?
0: सर, विशेष योग्यजन तो हर तरह के ही आते हैं और हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उनके जीवन स्तर को सुधारने और उनकी सहायता करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। मैं विशेष योग्यजनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यूडीआईडी कार्ड से 3,050 लोग हमारे वंचित हैं जो कि अभी पेंशन के पात्र होते हुए भी उनका पेंशन

0: नवीनीकरण नहीं हो पा रहा। मैं उन लोगों से आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो स्वावलंबन पोर्टल पे ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा के और जल्दी से जल्दी वो काम पूर्ण करें ताकि उनको यूडीआईडी कार्ड जारी किया जा सकते।
1: किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इस तरह का कार्ड बनवाने के लिए?
0: कार्ड बनवाने के लिए उसका आधार और जन आधार कार्ड मांग के और ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास उनको विजिट करनी पड़ती है, डॉक्टर साहब उसकी पूरी जाँच करके उसको कार्ड इश्यू कर देते हैं।
1: कहीं विशेष योग्य जन पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अपने घर से दूर जाने में परेशानी होती है, कई बार तो जो पढ़ाई का केंद्र है दूसरे जिले में भी हो सकता है, किस तरह से इस तरह के विशेष योग्य जन व्यक्तियों को आपका विभाग सहायता करता है?
0: उन लोगों के लिए हमारे अपने चित्तौड़ के अंदर एक सांवरिया बहुउद्देश्य दिव्यांग विद्यालय अपना खुला हुआ है। उसके अंदर मानसिक रूप से जिन लोगों की बीमारी है उन लोगों को वहाँ शिक्षा दी जाती है और बाकी उनको स्कूल जाने के लिए जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको हम दिव्यांग स्कूटी योजना में प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनको स्कूटी देने का हम प्रयास करते हैं। गतिशीलता उनके जीवन में लाने के लिए बरसक प्रयास करते हैं। विशेष योग्य जनों के लिए सरकारें बहुत अच्छी अच्छी स्कीम ला रहे हैं।
1: गढ़वाल साहब, विशेष योग्य जनों को कई तरह की परेशानियां योजनाओं का लाभ उठाने में आती है, कई बार वो पोर्टल पर ठीक से आवेदन नहीं कर पाते या डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह जाते हैं, किस तरह से उनकी सहायता की जाती है?
0: सर, उनके लिए हम समय समय पे ग्राम पंचायत यहाँ तक कि हम ग्राम स्तर पे भी कैंपों का आयोजन करते हैं। उनके लिए सांवरिया हॉस्पिटल के अंदर हेल्प डेस्क शुरू कर रखी है। बाकी हम दिव्यांग तक पहुँचने के लिए कैंपों का आयोजन करते हैं। अपने कलेक्टर साहब दिव्यांगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। दिव्यांग नहीं आ पाएगा, आप लोग दिव्यांग तक पहुँचे, हम उसका भरसक प्रयास करते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और हमारी टीम उन तक पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं।
1: गढ़वाल साहब, किस तरह की परेशानियां हमारे विशेष योग्य जन व्यक्ति आप तक पहुंचा पाते हैं?
0: सर, हमारे तक पहुंचने के बाद उनकी परेशानियां हम जहां तक हो सके योजनाओं का लाभ देके दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो हमारे तक पहुंच नहीं पाता, उसको कवर करने के लिए हम लोगों को कैंपों का आयोजन करना पड़ता है। उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम, हमारे मोबाइल नंबर हर जगह डिस्प्ले करते हैं। हम उनको, उनके परिवार को इतना बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर उनको नहीं ला पाते तो कम से कम हमें बताएं, हम उनको योजनाओं से जोड़ें और उनको लाभ पहुंचाएं।
1: किस तरह से विशेष योग्य जन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तक पहुंच सकता है?
0: देखो सर, आजकल सरकार ने सारा ऑनलाइन कर दिया है, तो सरकार का प्रयास ये रहता है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के दफ्तर में नहीं आके वो अपने ई मित्र पे पहुंच के वहां भी आवेदन कर सकते हैं और हर जगह ई मित्र आजकल अवेलेबल है। तो उन लोगों से हमारी अपील है कि आप ई मित्र पे जाके उनके कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार संपन्न करवाती है उनके फॉर्म फिल करें। उसके बाद में फॉर्म में जो भी उनके ऑब्जेक्शन वगैरह होंगे उनकी पूर्तियां हम अपने स्तर पे करवाते हैं, और लेकिन एक बार उसका फाइंड आउट हो उनको क्या चीज जरूरत है, कैसी कैसी उसको आवश्यकता है। हर गुरुवार को कलेक्टर ग्राम पंचायतों में जाके चौपालों का आयोजन कर रहे हैं, उनके थ्रू भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं।
1: क्या कोई चिट्ठी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा सकता है?
0: बिल्कुल सर, पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो साधन उन लोगों के पास अवेलेबल है नहीं सर, वो उस तरह से चिट्ठियां वगैरह तो हमारे पास नहीं आती। बाकी हमारे पास फोन वगैरह कई बार आते हैं, उनके थ्रू हम जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं।
1: सर, आपने कहा कि 3000 लोग ऐसे हैं जिनका कार्ड नहीं बना है, उनके लिए दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे प्रयास कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं सर, स्वस्थ व्यक्ति उनका परिवार का, उनके भाई बंधु, उनके प्रयास कर सकते हैं। बाकी उनका हमारे पास पोर्टल है, क्लिक साहब ने हमें आदेशित किया है, हम आंगनबाड़ी वर्कर आशा सहयोगिनी उनकी मदद लेके हम खुद उन लोगों तक हम पहुंचेंगे और अगर वो पात्र हैं तो उनका नेक्स्ट 15 डेज में हम करवाएंगे।
1: कई बार पोर्टल पर किसी भी योजना से लाभान्वित कोई व्यक्ति होना चाहता है, जानकारी अधूरी भर दी जाती है या अपलोड कर दी जाती है, ऐसी दशा में उनकी सहायता किस तरह से की जाती है?
0: सर, हमारे पास अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर आ गया तो हम उनसे बात करते हैं और उससे फिर डॉक्यूमेंटेशन हम मंगवाते हैं, उसकी पात्रता की जांच करते हैं, वो जिस योजना में कवर हो रहा है उसके हम उसका फॉर्म फिलअप करवाते हैं। एक बार पता चल जाता है उसका, हमारे पास मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है, उसके बाद हम खुद आगे होके मदद करते हैं। सर, ये दिव्यांगों की मदद करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है।
1: कई बार बालिकाएं युवतियां भी दिव्यांग हो जाती है या उनके पास में कार्ड बना हुआ है, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान

0: रखे जाते हैं?
1: हम शुरू में जो वर्णन कर चुके उन्हीं योजनाओं में कवर जो होते हैं उनको हम लाभ दे पाते हैं। पात्रता के हिसाब से अपना लिख देते हैं, पात्रता हम खुद देख लेते हैं। अगर वो हमें आके डायरेक्टली बता दें, ई मित्र के थ्रू बता दें, तो जो उनके लिए लागू होगी उस योजना में हम उनको लाभ देते हैं।
0: गढ़वाल साहब, हमारे विशेष योग्यजन व्यक्तियों को, उनके परिवार के लोगों को कोई सलाह देनी हो क्या देना चाहेंगे?
1: मैं इनके परिवार को ये सलाह देता हूँ कि जो भी इनके दुर्विकार या इनके शरीर में जो कमियां हो गई वो तो हो गई, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। अब हम खुद इनकी जितनी हो सके उतनी मदद करके इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। और इन लोगों में भी कोई पांव से चल नहीं पाता लेकिन दिमाग इनका स्वस्थ होता है, बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छा दिमाग चलता है सर, अगर अपना समाज इनके प्रति थोड़ा बहुत सकारात्मकता दिखा के प्रयास करे तो ये लोग भी अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, इनको भी अधिकार है जीवन जीने का। तो अपन लोगों को सबको मिलके इनकी मदद करनी चाहिए, स्पेशली इनके परिवार को इनकी मदद करनी चाहिए।
0: हमारे समाज का व्यवहार कई बार अच्छा नहीं होता, किस तरह का व्यवहार इनके प्रति हमारा होना चाहिए?
1: सर, इनके प्रति अपने को बहुत ही आत्मीयता का भाव रखना पड़ेगा, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करेंगे तब जाके ये अपने को अपनी पूरी बात बताते हैं, अपने साथ मित्रवत व्यवहार ये कर पाते हैं। तो अपने को इनसे इमोशनली अटैचमेंट होगा तभी ये लोग आराम से अपने सारी बातें अपने से शेयर कर पाते हैं।
0: और जीवन में कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का व्यक्ति विशेष योग्यजन हो सकता है, तो हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए जैसा हम अपने परिवार के प्रति रखते हैं।
1: बिल्कुल सर, जैसा अपन अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ करते हैं वैसा इन लोगों के साथ अपने को व्यवहार करना चाहिए।
0: जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वैसा किसान भाई, देखो जितेंद्र कुमार गढ़वाल साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थी कि विशेष योग्यजन व्यक्तियां ने सरकार कई सुविधा दे रही है सा, और अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। सुना संदेश।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किसान भाई अब आगे बढ़ा, सुना प्यारो सो लोकगीत सीमा मिश्रा और साथी की आवाज में।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किसान भैया, मंडी भाव बता दें निम्बाड़ा का आपने। गेहूं का भाव रहा है 2421-2770 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का पीली का रहा है 1500-1972 रुपया प्रति क्विंटल।

का भाव रहा है 2050 और 2423 रुपये प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा है 4852 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का 6280 हूँ 6680 रुपया। सोयाबीन का 4911 हूँ 6600 रुपया। आसानी अपने मूंगफली का भाव रहा है 6700 हूँ 8500 रुपया प्रति क्विंटल। किनोवा का भाव रहा है 5001 हूँ 5800 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी अपने मेथी का भाव रहा है 5770 हूँ 7231 रुपया। लहसुन का भाव रहा है 5000 हूँ 14400 रुपया। चिया का भाव रहा है 14701 हूँ 18500 रुपया। इसबगोल का भाव रहा है 7000 हूँ 10500 रुपया प्रति क्विंटल। अलसी का भाव रहा है 8200 हूँ 8550 रुपया प्रति क्विंटल। कलौंजी का भाव रहा है 16600 हूँ 16682 रुपया प्रति क्विंटल सा। तो ये भैया अपना आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव सा, और वह आपने देना मौसम की जानकारी। आज को तापमान जो है अधिकतम अपने 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम जो है अपने 23 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रही अपने 42% और हवा की रफ्तार रही अपने 12 किलोमीटर प्रति घंटा सा। आसानी अपने काल का मौसम को अनुमान है। अधिकतम तापमान रहवा की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रह सके अपने 24 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रह सके अपने 79% और हवा की रफ्तार रहवा की संभावना है 17 किलोमीटर प्रति घंटा सा। देखो आज मौसम साफ रो है और काले कटे कटे तेज हवा के साथ हल्की बारिश हवा की संभावना है सा। और अब कार्यक्रम समाप्त करवा कि आपके छोटू भाई ने दो आ गया घना घना राम राम सा।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे खेती किसानी। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार कार्यक्रम। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अब्दुल सत्तार का नमस्कार।

दोस्तों, लर्जिस भरी इस आवाज़ को हम पहचाने तो भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम काल में से एक महान गायक का नाम हमारे सामने उभर कर आता है। वो नाम है गज़लों के बेताज बादशाह, हिंदी सिनेमा के बेजुबावरा तलत महमूद का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की आज की कड़ी में बातें तलत महमूद साहब के जीवन से जुड़ी करेंगे और उनकी मखमली आवाज़ में ढले गीतों के सुरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद ने बचपन में अपने पिता से नाते और कलाम सुनते हुए उनकी नकल करते रहते थे तलत महमूद, पर घर में कोई उसे प्रोत्साहित नहीं करता। मगर तलत महमूद की बुआ संगीत की तालीम देने के लिए मॉरिश कॉलेज में उनका दाखिला कराया। तलत के मॉरिश कॉलेज में दाखिले की भी एक दिलचस्प कहानी है। कॉलेज में दाखिले के लिए कमेटी छात्रों की संगीत की समझ के संबंध में इंटरव्यू लेती है। तलत को संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, मगर विद्वान कमेटी

के सामने जब तलत महमूद ने गीत का आलाप लिया, उसी से प्रसन्न होकर तलत का दाखिला मॉरिस कॉलेज लखनऊ में किया गया और आगे चलकर यही आवाज़ दुनिया की चहेती बन गई। तो आइए सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज़ में गाया ये बेहतरीन नगमा, जो हमने लिया है आपके लिए फिल्म दाग से।

दोस्तों, तलत महमूद ऐसे स्वर के मालिक थे जिनको 16 साल की उम्र में ही कमलदास गुप्ता का गीत सब दिन एक समान नहीं गाने का मौका मिला और इस गीत की इतनी लोकप्रियता थी कि उस समय प्रसिद्ध गीत रिकॉर्डिंग कंपनी HMV की टीम ने कलकत्ता से लखनऊ आकर तलत महमूद की आवाज़ में गीतों और गज़लों को रिकॉर्ड किया। तो आइए एक और गीत आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज़ में।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसा भी दौर था जब अधिकतर अभिनेता अपने गीत खुद गाया करते थे। कुंदनलाल सहगल साहब जैसे महान गायक से प्रेरित होकर तलत महमूद भी गायक और अभिनेता बनने सन 1944 में कलकत्ता जा पहुँचे, क्योंकि गायकी के क्षेत्र में उन दिनों प्रधान केंद्र कलकत्ता था। लगभग उसी समय कलकत्ता छोड़कर कुंदनलाल सहगल मुंबई चले गए। तलत महमूद को 100 से अधिक बांग्ला गानों में तपन कुमार से के नाम से गाने उन्होंने गाए, मगर सफलता नहीं मिलती देख तलत महमूद भी मुंबई की ओर रुख कर लिया, जहां संगीतकार अनिल विश्वास ने आरजू फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माए गाने में तलत महमूद को मौका दिया, जो गीत हिट हुआ और तलत की आवाज़ सब संगीतकारों के निगाहों में जम गई। तो आइए आरजू फिल्म का वही गीत आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों, सन 1949 में संगीतकार शंकर जयकिशन के फेवरेट गायक स्वर थे मुकेश। संगीतकार नौशाद अपने गीतों के लिए एक नई आवाज़ की तलाश में थे। तब नौशाद अपनी फिल्म बाबुल के लिए तलत महमूद को गायक के रूप में लेकर आए। फिल्म बाबुल के गीत हिट हुए और इसी का फ़ायदा तलत महमूद को मिला। उसी वक्त तलत महमूद ने कई संगीतकारों के साथ दू दर्जन से अधिक गीतों में अपनी आवाज़ दी और तलत महमूद की लोकप्रियता बढ़ती गई। साथियों, फिल्म बाबुल का वो गीत आपको अब हम सुनवा रहे हैं जिसमें तलत महमूद के साथ शमशाद बेगम ने अपना सुरीला स्वर दिया है।

दोस्तों, तलत महमूद की फिल्मों में अभिनय करने की भी एक जिद थी। अपने गीतों की रफ्तार लंबे समय तक तलत महमूद कायम नहीं रख पाए, क्योंकि गायक के रूप में ख्याति से उन्हें तसल्ली नहीं थी। वास्तविकता में तलत महमूद जितने अच्छे गायक थे, उतने अच्छे अभिनेता नहीं थे। मैं तलत महमूद की आवाज़ की लालसा में कई फिल्मों में अभिनय करने और गीत गाने का भी उन्हें मौका मिला। सोहराब मोदी की फिल्म वारिस में सुरैया के साथ, एआर कारदार के ने फिल्म नादान में, और तकरीबन 12-13 फिल्मों में नायक भी तलत महमूद बने। पर गायन पर समुचित ध्यान नहीं देने से तलत महमूद पिछड़ते चले गए, हाशिए पर आ गए। आइए एक और नगमा आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की ही आवाज़ में।

दोस्तों, बहुत संजीदा और दरिया दिल इंसान तलत महमूद को निर्माता निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म मधुमति में संगीतकार सलील चौधरी दिलीप कुमार की आवाज़ के लिए लेना चाहते थे, पर उस समय गायक मुकेश के सितारे गर्दिश में थे। तलत महमूद ने संगीतकार सलील दास से कहा कि इस फिल्म में मेरी जगह मुकेश को आप काम दें, ताकि उन्हें तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े। तलत महमूद की जगह मधुमति का वो गाना मुकेश से गवाया गया। तलत महमूद की इस बात को लेकर खूब सराहना हुई। दोस्तों, तलत महमूद ने समझ लिया था कि 60 के दशक में अब उनकी गायकी फिल्मों में नहीं चल पाएगी, क्योंकि संगीत का स्वरूप बदलने लगा था। तलत महमूद ने 200 फिल्मों में लगभग 500 गीत व 250 से अधिक गैर फिल्मी नगमे गाए। तलत महमूद को सन 1986 में पहली बार भारतीय गायक की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया, फिर विदेशों में शो करने का एक सिलसिला चल निकला। 1992 में पद्म भूषण से भी तलत महमूद को सम्मानित किया गया। 9 मई 1998 को मुंबई में तलत महमूद पक्षाघात के चलते इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, मगर तलत महमूद की सुरमई आवाज़, सुरमई गीत आज भी फिजा में उनकी आवाज़ बनकर महक रहे हैं, चहक रहे हैं।

फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार कार्यक्रम की आज की कड़ी से अब अपने दोस्त अब्दुल सत्तार को दे अनुमति। शब्बा खैर।

0: फिल्म संगीत के तहत की कलाकार कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी की चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुने राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में हम आपको सबसे पहले सुना रहे हैं सीमा मिश्रा का गाया राजस्थानी लोकगीत। उससे पहले ये संदेश सुन लें।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: साथियों, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनें अनुराधा पूडवाल की आवाज में गाया ये राजस्थानी लोकगीत।

अनुराधा पौडवाल की गाई इस राजस्थानी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भक्ति रचनाएं। पहले ये संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं आइए सुनते हैं सुगम संगीत की कार्यक्रम में सबसे पहले पीयूषा अनुज

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: साथियों, भी आपने पीयूषा अनुज और कैलाश अनुज की आवाजों में ये भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम सुगम संगीत का है और साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई ये भक्ति रचना।

साथियों, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना सुनी। आइए सुने अब अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में ये भक्ति रचना। कार्यक्रम सुगम संगीत का है।

साथियों, अभी आपने अनुराधा पूर्वाल की आवाज में ये भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम सुगम संगीत का है साथियों, और आखिर में आपको सुनवाते हैं भावना लूनकर का गाया ये मीरा भजन।

भावना लून करके गए इस मीरा भजन के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है FM 102.9 MHz पर। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज़ 8:09 अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिस

0: के नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनो

0: बल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा।

0: रिपोर्ट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष

0: जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही।

0: वक्त की हेरा फेरी है और वक्त की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है?
3: मैं आऊं विशाल।
2: पंडित जी शुरू कीजिए।
4: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
2: बालिया, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
4: वस्त्र कंधे पर रख
3: सिकंदर। सिकंदर क्या मत की कुत्ते मेरे यार चरण जी झड़प हो गए। किससे हुई? बहन किससे हुई?
5: नहीं बताती हूँ।
3: नहीं
5: दिला में मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
3: बस बस करो मैम साहब।
2: मैम साहब
3: क्या काम ना है तेरी मैम साहब जिससे तू?
2: नहीं
5: विशाल मुझे कुछ सिकंदर सारी जिंदगी मैम साहब को करता।
3: नहीं नहीं
5: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिले दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया
3: सिकंदर। ये तुमने क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म

कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल

फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जो हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल सुबह 8:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।